ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 12 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजीरो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। कोइजुमी ने पत्रकारों को बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र से दागा गया था और इसने लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कहा कि माना जाता है ये जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी है। कोइजुमी ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण और अन्य कृत्य जापान तथा वैश्विक समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जापान ने पेइचिंग स्थित अपने दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया के समक्ष

विरोध दर्ज कराया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उत्तर कोरिया ने इस साल 7वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। जापान के मुख्य द्वीप पर से एक शक्तिशाली तूफान गुजरा, जिससे टोक्यो और आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम बुधवार को उष्णकटिबंधीय निम्न दाब तंत्र में बदल गया। वायुमंडलीय परिस्थितियां अत्यधिक अस्थिर रहने की आशंका है। तोचिगी प्रीफेक्चर में हुई क्षति की रिपोर्टों में मंगलवार को एक एक्सप्रेसवे पर निर्माण अवरोधक के गिरने की घटना शामिल है। एक कार उसमें फंस गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। तूफान के कारण उत्सुनोमिया स्टेशन के पास और टोक्यो में पेड़ गिर गए। इबाराकी और तोचिगी प्रीफेक्चरों में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए। बुधवार को पश्चिमी और पूर्वोत्तर जापान में भारी बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने भूस्खलन, नदियों में उफान और जल भराव की चेतावनी जारी की है। कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 180 से अधिक हो गई है और राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह लगभग 7:30 बजे 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका केंद्र देश के पश्चिमी भाग में था। जोरदार झटकों से भूकंप के केंद्र और दक्षिण पश्चिम सहित एक विस्तृत क्षेत्र में इमारतें ढह गईं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 प्रमुख शहरों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 2,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कोलंबिया के प्रमुख शहरों के एक संघ का कहना है कि उसने दक्षिण पश्चिमी शहर कैली में 95 और भूकंप के केंद्र के पास स्थित शहर परेरा में 79 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कैली में मंगलवार तड़के बचाव दल ने इमारत के मलबे से एक व्यक्ति को बाहर निकाला। अधिकारियों का मानना है कि मलबे के नीचे अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि नुकसान का पूरा जायजा लेने में समय लग सकता है, क्योंकि कुछ प्रभावित क्षेत्र पहाड़ों में हैं और कई जगहों पर संचार व्यवस्था ठप हो गई है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर के पूर्व अध्यक्ष ओकुदा हिरोशी का शनिवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओकुदा ने 1955 में टोयोटा की बिक्री कंपनी में काम करना शुरू किया था। बाद में ये कंपनी टोयोटा की विनिर्माण शाखा के साथ मिलकर टोयोटा मोटर बन गई। 1995 में ओकुदा कंपनी के ऐसे पहले अध्यक्ष बने जो संस्थापक परिवार से नहीं थे। उनके कार्यकाल के दौरान टोयोटा ने प्रियस हाइब्रिड वाहन लॉन्च किया और कई पर्यावरण संबंधी पहल को गति दी। कंपनी ने विदेशी बाजार में भी अपना विस्तार तेज किया। 1999 में टोयोटा के चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपना ध्यान जापान के कारोबारी समुदाय पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री कोइजुमी जुन इचिरो की सरकार में आर्थिक एवं वित्तीय नीति समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 2002 में मौजूदा जापान व्यापार परिसंघ या खेईदानरेन के पहले अध्यक्ष भी बने। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में ओकुदा ने खाड़ी देशों और अन्य स्थानों का दौरा किया, विदेशी नेताओं से मुलाकात की और जापान की तरफ से राजनय में शामिल रहे। उन्होंने एक नीति आधारित वित्तीय संस्थान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। ओकुदा 2018 तक टोयोटा कंपनी के सलाहकार बने रहे। अमरीकी सेना का कहना है कि उसने ईरान की ओर जा रहे पनामा ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज को निष्क्रिय कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उसके बलों ने उस पोत के स्टीयरिंग गियर को निष्क्रिय कर दिया है जिसने ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। पोस्ट में कहा गया है कि अमरीकी

0: नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइलें दागी क्योंकि जहाज के चालक दल ने बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। इसमें ये भी कहा गया है कि अब जहाज पूर्ण रूप से प्रभावी अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरान की ओर नहीं जा रहा है। अमरीकी सेना का कहना है कि 14 जुलाई को मौजूदा नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक उसने 3 जहाजों को निष्क्रिय किया है जो उसकी नाकाबंदी की अवहेलना कर रहे थे। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों सहित कई मामलों में मौत की सजा सुनाई है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित 8 अन्य लोगों को भी मौत की सजा सुनाई गई। असद के नेतृत्व वाली सीरिया की निरंकुश सरकार दिसंबर 2024 में गिर गई थी। देश 2011 से गृह युद्ध की चपेट में था। सीरिया के पुनर्निर्माण के बीच पूर्व सरकार की जवाबदेही तय करने के प्रयास भी सामने आ रहे हैं। असद प्रशासन ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने निर्णय लेने वाले सर्वोच्च व्यक्ति और हत्या तथा अन्य अपराधों में शामिल सरकारी संस्थानों को निर्देशित करने में असद की भूमिका का हवाला दिया। सरकार गिरने के तुरंत बाद असद रूस में निर्वासन में चले गए। उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चला। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं।
1: और अंत में सुने इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।
2: जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजीरो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। कोइजुमी ने पत्रकारों को बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र से दागा गया था और इसने लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कहा कि माना जाता है ये जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी है।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा, भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारूजी ने कहा,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारूजी ने जवाब दिया,
3: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: すみません,
1: माफ कीजिए।
2: वतशी नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो
0: अच्छा,
4: जा नातो मोदामे,
0: तो फिर नातो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नातो दाइस्की देस,
1: नातो बहुत पसंद है।
0: नातो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नातो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
5: नमातमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
5: तबेरारेमासें
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
5: तबेरारेमासें,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
5: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
5: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
5: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
5: तबेरारेमासें।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
5: तबेरारेमासें।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासें। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
5: तबेरारेमासें।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तबेरारेमासें, नमा तमागो वा तबेरारेमासें।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
6: दोज़ो ताकुसान ताबेते कुदासाई।
2: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: दोज़ो ताकुसान ताबेते कुदासाई,
1: लीजिए भर पेट खाइएगा।
5: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
5: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
5: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
5: 食べる
0: के ते रूप के बाद
5: ください
0: जोड़कर बना है।
1: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
2: すみません。私、刺身は食べられません。
1: माफ कीजिए, मैं sashimi नहीं खा सकती।
5: すみません。
0: का मतलब है माफ कीजिए।
5: 私。
0: का अर्थ है मैं और
5: sashimi
0: है sashimi यानी कच्ची मछली।
1: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: sashimi は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
5: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन।
1: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बुतानिकु।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: すみません。私、豚肉は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
8: いただきます。
5: いただきます。
1: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
5: गुत्सो समादेश्ता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
5: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
5: गुत्सो समादेश्ता।
1: तो सुनिए और दोहराइए
5: इतादाकिमास गुत्सो समादेश्ता।
0: और दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
8: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
1: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
1: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 12 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजीरो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। कोइजुमी ने पत्रकारों को बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र से दागा गया था और इसने लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कहा कि माना जाता है ये जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी है। कोइजुमी ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण और अन्य कृत्य जापान तथा वैश्विक समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जापान ने पेइचिंग स्थित अपने दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उत्तर कोरिया ने इस साल 7वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। जापान के मुख्य द्वीप पर से एक शक्तिशाली तूफान गुजरा जिससे टोक्यो और आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम बुधवार को उष्णकटिबंधीय निम्न दाब तंत्र में बदल गया। वायुमंडलीय परिस्थितियां अत्यधिक अस्थिर रहने की आशंका है। तोचिगी प्रिफेक्चर में हुई क्षति की रिपोर्टों में मंगलवार को

एक एक्सप्रेसवे पर निर्माण अवरोधक के गिरने की घटना शामिल है। एक कार उसमें फंस गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। तूफान के कारण उत्सुनोमिया स्टेशन के पास और टोक्यो में पेड़ गिर गए। इबाराकी और तोचिगी प्रिफेक्चरों में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए। बुधवार को पश्चिमी और पूर्वोत्तर जापान में भारी बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने भूस्खलन, नदियों में उफान और जलभराव की चेतावनी जारी की है। कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 180 से अधिक हो गई है और राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह लगभग 7:30 बजे 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका केंद्र देश के पश्चिमी भाग में था। जोरदार झटकों से भूकंप के केंद्र और दक्षिण पश्चिम सहित एक विस्तृत क्षेत्र में इमारतें ढह गईं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 प्रमुख शहरों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 2,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कोलंबिया के प्रमुख शहरों के एक संघ का कहना है कि उसने दक्षिण पश्चिमी शहर कैली में 95 और भूकंप के केंद्र के पास स्थित शहर परेरा में 79 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कैली में मंगलवार तड़के बचाव दल ने इमारत के मलबे से एक व्यक्ति को बाहर निकाला। अधिकारियों का क्या मानना है कि मलबे के नीचे अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि नुकसान का पूरा जायजा लेने में समय लग सकता है, क्योंकि कुछ प्रभावित क्षेत्र पहाड़ों में हैं और कई जगहों पर संचार व्यवस्था ठप हो गई है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर के पूर्व अध्यक्ष ओकुदा हिरोशी का शनिवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओकुदा ने 1955 में टोयोटा की बिक्री कंपनी में काम करना शुरू किया था। बाद में ये कंपनी टोयोटा की विनिर्माण शाखा के साथ मिलकर टोयोटा मोटर बन गई। 1995 में ओकुदा कंपनी के ऐसे पहले अध्यक्ष बने जो संस्थापक परिवार से नहीं थे। उनके कार्यकाल के दौरान टोयोटा ने प्रियस हाइब्रिड वाहन लॉन्च किया और कई पर्यावरण संबंधी पहल को गति दी। कंपनी ने विदेशी बाजार में भी अपना विस्तार तेज किया। 1999 में टोयोटा के चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपना ध्यान जापान के कारोबारी समुदाय पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री कोइजुमी जुनइचिरो की सरकार में आर्थिक एवं वित्तीय नीति समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 2002 में मौजूदा जापान व्यापार परिसंघ या खेईदानरेन के पहले अध्यक्ष भी बने। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में ओकुदा ने खाड़ी देशों और अन्य स्थानों का दौरा किया, विदेशी नेताओं से मुलाकात की और जापान की तरफ से राजनय में शामिल रहे। उन्होंने एक नीति आधारित वित्तीय संस्थान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। ओकुदा 2018 तक टोयोटा कंपनी के सलाहकार बने रहे। अमरीकी सेना का कहना है कि उसने ईरान की ओर जा रहे पनामा ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज को निष्क्रिय कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उसके बलों ने उस पोत के स्टीयरिंग गियर को निष्क्रिय कर दिया है जिसने ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। पोस्ट में कहा गया है कि अमरीकी नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइलें दागी क्योंकि जहाज के चालक दल ने बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। इसमें यह भी कहा गया है कि अब जहाज पूर्ण रूप से प्रभावी अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरान की ओर नहीं जा रहा है। अमरीकी सेना का कहना है कि 14 जुलाई को मौजूदा नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक उसने 3 जहाजों को निष्क्रिय किया है जो उसकी नाकाबंदी की अवहेलना कर रहे थे। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों सहित कई मामलों में

0: की सजा सुनाई है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित 8 अन्य लोगों को भी मौत की सजा सुनाई गई। असद के नेतृत्व वाली सीरिया की निरंकुश सरकार दिसंबर 2024 में गिर गई थी। देश 2011 से गृह युद्ध की चपेट में था। सीरिया के पुनर्निर्माण के बीच पूर्व सरकार की जवाबदेही तय करने के प्रयास भी सामने आ रहे हैं। असद प्रशासन ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने निर्णय लेने वाले सर्वोच्च व्यक्ति और हत्या तथा अन्य अपराधों में शामिल सरकारी संस्थानों को निर्देशित करने में असद की भूमिका का हवाला दिया। सरकार गिरने के तुरंत बाद असद रूस में निर्वासन में चले गए। उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चला। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि उन्हें प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं।
1: और अंत में सुने इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।
2: जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। कोइजुमी ने पत्रकारों को बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र से दागा गया था और इसने लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कहा कि माना जाता है यह जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी है।
1: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
6: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमातामागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारुजी ने जवाब दिया,
6: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
7: नमातामागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
7: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
7: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
7: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
7: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
7: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
7: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
7: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
7: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए,
7: तबेरारेमासेन। नमातामागो वा तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
8: दोज़ो, ताकुसान तबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा तबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
8: दोज़ो, ताकुसान तबेते कुदासाई,
1: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
7: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
7: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
7: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
7: 食べる
0: के ते रूप के बाद
7: ください
0: जोड़कर बना है।
3: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
2: すみません。私、刺身は食べられません。
3: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
7: すみません。
0: का मतलब है माफ कीजिए।
7: 私。
0: का अर्थ है मैं और
7: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
3: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
7: साशिमी は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
7: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन।
3: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
7: बुतानिक।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
9: すみません。私、豚肉は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
7: いただきます।
3: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
7: गुत्सो समादेश्ता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
7: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
7: गुत्सो समादेश्ता।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
7: इतादाकिमास गुत्सो समादेश्ता।
0: और दोस्तों अब आज की

0: अचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
1: いただきます。
2: 日本食は健康にいいんですよ。
3: これ生卵ですか？
2: はい。
3: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
3: 納豆、大好きです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
6: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
6: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
6: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम है और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
6: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी, तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की बड़ी गाड़ी साज कंपनी टोयोटा मोटर के साबिक सदर ओकुदा हिरोशी हफ्ते के रोज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। ओकुदा ने 1955 में तब की टोयोटा की सेल्स कंपनी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में ये कंपनी टोयोटा के पैदावारी शोबे में जम होकर टोयोटा मोटर बन गई। अनजहानी ओकुदा 1995 में बानी खानदान से बाहर कंपनी का सदर बनने वाले पहले फर्द थे। उनके दौर में टोयोटा ने प्रियूस हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की और अपने माहौलियाती इकदाम को बढ़ाया। कंपनी ने बैरून मुल्क मंडियों में अपनी तोसी को भी तेज किया। 1999 में टोयोटा का चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपनी तवज्जो जापान की कारोबारी बरादरी पर मरकूज कर दी। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम कोइजुमी जुनिचिरो के दौर में हुकूमत के इक्तसादी और मालियाती पॉलिसी पैनल के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 2002 में कारोबारी फेडरेशन के पहले सरबराह भी बने, जो अब जापान बिजनेस फेडरेशन या कैदानरेन कहलाती है। वज़ीर आज़म के खसूसी एलची के तौर पर ओकुदा ने खलीजी रियासतों और दीगर मकामात के दौरे किए, गैर मुल्की रहनुमाओं से मुलाकातें की और जापान की जानिब से सफारतकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने जापान बैंक बराए बैन अल्कौमी ताउन के सरबराह के तौर पर भी काम किया, जो पॉलिसी पर मबनी मालियाती इदारा है। ओकुदा 2018 तक टोयोटा के मशीर रहे। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने पानामा के झंडे वाले उस कार्गो जहाज को नाकारा बना दिया है जो ईरान की तरफ जा रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मंगल के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उसकी फोर्सेस ने मस्कूरा बहरी जहाज के स्टीयरिंग गियर को नाकारा कर दिया है। उस जहाज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ जाते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। पोस्ट में कहा गया है कि जहाज के अमले ने इंतबाह को बार बार नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइल दागे। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि ये जहाज अब अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब गामजन नहीं। ये नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने 14 जुलाई को मौजूदा बहरी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक 3 ऐसे बहरी जहाजों को गैर फाल किया है जिन्होंने हदायात की तामील नहीं की। शाम की एक अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को कत्ल और इंसानियत के खिलाफ जराइम समेत दीगर जराइम में सजाए मौत सुनाई है। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने इतला दी है कि दारुल हुकूमत दमिश्क की एक अदालत ने मंगल को इस सजा का ऐलान किया। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और उनकी हुकूमत के साबिक सीनियर अहदेदारों समेत 8 दीगर अफराद को भी मौत की सजा सुनाई गई है। असद की जेर क्यादत शाम की आमराना हुकूमत दिसंबर 2024 में गिर गई थी। ये मुल्क 2011 से खाना जंगी का शिकार था। शाम की तामीर नो के साथ साबिक हुकूमत के मुहासबे के इकदाम सामने आ रहे हैं। असद हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन किया था। मंगल को सुनाई गई सजा में अदालत ने असद के बतौर आला तरीन फैसला साज और कत्ल और दीगर जराइम में मुलव्वस रियासी इदारों को अहकाम देने में उनके किरदार का हवाला दिया। असद अपनी हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद रूस में जलावतनी इख्तियार कर

0: गए थे। इस मुकदमे की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में हुई। ये अभी तक वाज़े नहीं है कि आया उनकी हवालगी की जाएगी या नहीं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान के वजीर दिफा कोइजुमी शिनजिरो का कहना है कि शुमाली कोरिया ने बुध की सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, और टोक्यो और नवाही इलाकों में नुकसानात करने के बाद एक ताकतवर तूफान जापान के मरकजी जजीरे से गुजर गया है। हुकाम का कहना है कि खतरात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और कोलंबिया में पीर के रोज़ आने वाले एक ताकतवर जलजले से मरने वालों की तादाद 180 से तजावज़ कर गई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: れません。生卵は食べられません。
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक खातून किसी जापानी खाने के बारे में कह रही है कि वो ये नहीं खा सकती।
3: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाई।
4: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाई।
1: जी भर कर खाइए।
2: दोज़ो, ये कोई चीज पेश करते वक्त कहा जाने वाला लफ्ज है। इसका तर्जुमा लीजिए किया जा सकता है। ताकसान के मानी है बहुत, और ताबेते कुदासाई यानी खाइए। ये फेल ताबेरू यानी खाना की ते शक्ल के साथ कुदासाई लगाकर बनाया गया है।
4: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
1: माजरत चाहती हूँ, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
2: सुमिमासेन माजरत के लिए इस्तेमाल होता है। वाताशी यानी मैं और साशिमी कच्ची मछली की डिश को कहते हैं। ताबेरारेमासेन तो आपको याद ही होगा यानी नहीं खा सकती।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए।
0: साशिमी वा ताबेरारेमासेन। वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीजों के साथ मश्क करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते, तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
0: एबी। एबी
2: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें।
3: सुमिमासेन, वताशी एबी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब यही जुमला खिंजीर के गोश्त के बारे में कहने की मश्क करें। खिंजीर के गोश्त की जापानी है
0: बुतानिकु। बुतानिकु।
5: सुमिमासेन, वताशी बुतानिकु वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वताशी बुतानिकु वा ताबेरारेमासेन।
1: अनवर साहब, क्या ताबेरारेमासेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नापसंदीदा चीज के लिए किया जाता है?
2: जी नहीं, अगर आप तिब्बी, मजहबी या किसी और वजह से कोई चीज नहीं खा सकते तब भी ताबेरारेमासेन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये बहुत कारामद है। और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में ताम और काइतो ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें।
6: इतादाकिमास।
2: जापानी जबान में, बल्कि यूं कह लें कि जापानी सकाफत में खाना शुरू करते वक्त इतादाकिमास कहा जाता है। ये उस खाने या खुराक की तैयारी से मुंतलिक तमाम अफराद के लिए शुक्रगुजारी के साथ साथ खुद खुराक के लिए अदब का इजहार है। खाना ख़त्म करने के बाद गोचिसो समादिश्ता कहा जाता है। इन दोनों इस्तलाहात इतादाकिमास और गोचिसो समादिश्ता को एक साथ याद कर लेना बेहतर होगा।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
7: इतादाकिमास, गोचिसो समादिश्ता।
8: इतादाकिमास, गोचिसो समादिश्ता।
1: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
0: इतादाकिमास, गोचिसो समादिश्ता।
1: जापानियों के साथ खाना खाते वक्त अगर आप ये इस्तलाहात इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ उनसियत महसूस करेंगे।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम ने कोई चीज ना खा सकने की बात की है।
6: इतादाकिमास।
9: निहोन शोकु वा केंको नी ई इन देसु यो।
10: कोरे नमा तमागो देसु का?
9: हाई।
10: सुमिमासेन, वताशी नमा तमागो वा ताबेरारेमासेन।
11: सो, जा नत्तो मो दामे?
10: नत्तो दाइसुकी देसु।
12: क्रीशिंबो काइतो नी ओमाकासे।
1: और अब खानों के शौकीन काइतो के मशवरों का कॉर्नर। आज का मौजू जापानी नाश्ता है।
2: हीरा, जापानी नाश्ते से आपके जहन में कैसा नाश्ता आता है?
1: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकालमे वाला मंजर।
2: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजर कशी की है। बाज लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں۔ آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے۔
1: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے؟
2: جی بالکل، آج کل ڈبل روٹی، تلے ہوئے انڈے، پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے۔
1: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
2: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے، جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہے کھا سکتے ہیں۔
1: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے، اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔ اگلے سبق میں تام کی طبیعت کچھ خراب ہے، ہاروسان اسے کچھ مشورہ دیتی ہیں۔

सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 12 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजीरो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। कोइजुमी ने पत्रकारों को बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र से दागा गया था और इसने लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कहा कि माना जाता है ये जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी है। कोइजुमी ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण और अन्य कृत्य जापान तथा वैश्विक समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जापान ने पेइचिंग स्थित अपने दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उत्तर कोरिया ने इस साल 7वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। जापान के मुख्य द्वीप पर से एक शक्तिशाली तूफान गुजरा जिससे टोक्यो और आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम बुधवार को उष्णकटिबंधीय निम्न दाब तंत्र में बदल गया। वायुमंडलीय परिस्थितियां अत्यधिक अस्थिर रहने की आशंका है। तोचगी प्रिफेक्चर में हुई क्षति की रिपोर्टों में मंगलवार को एक एक्सप्रेसवे पर निर्माण अवरोधक के गिरने की घटना शामिल है। एक कार उसमें फंस गई लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। तूफान के कारण उत्सुनोमिया स्टेशन के पास और टोक्यो में पेड़ गिर गए। इबाराकी और तोचगी प्रिफेक्चरों में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए। बुधवार को पश्चिमी और पूर्वोत्तर जापान में भारी बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने भूस्खलन, नदियों में उफान और जलभराव की चेतावनी जारी की है। कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 180 से अधिक हो गई है और राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह लगभग 7:30 बजे 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया जिसका केंद्र देश के पश्चिमी भाग में था। जोरदार झटकों से भूकंप के केंद्र और दक्षिण पश्चिम सहित एक विस्तृत क्षेत्र में इमारतें ढह गईं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 प्रमुख शहरों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 2,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कोलंबिया के प्रमुख शहरों के एक संघ का कहना है कि उसने दक्षिण पश्चिमी शहर कैली में 95 और भूकंप के केंद्र के पास स्थित शहर परेरा में 79 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कैली में मंगलवार तड़के बचाव दल ने इमारत के मलबे से एक व्यक्ति को बाहर निकाला। अधिकारियों का क्या मानना है कि मलबे के नीचे अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि नुकसान का पूरा जायजा लेने में समय लग सकता है क्योंकि कुछ प्रभावित क्षेत्र पहाड़ों में हैं और कई जगहों पर संचार व्यवस्था ठप हो गई है।

0: वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर के पूर्व अध्यक्ष ओकुदा हिरोशी का शनिवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओकुदा ने 1955 में टोयोटा की बिक्री कंपनी में काम करना शुरू किया था। बाद में ये कंपनी टोयोटा की विनिर्माण शाखा के साथ मिलकर टोयोटा मोटर बन गई। 1995 में ओकुदा कंपनी के ऐसे पहले अध्यक्ष बने जो संस्थापक परिवार से नहीं थे। उनके कार्यकाल के दौरान टोयोटा ने प्रियस हाइब्रिड वाहन लॉन्च किया और कई पर्यावरण संबंधी पहल को गति दी। कंपनी ने विदेशी बाजार में भी अपना विस्तार तेज किया। 1999 में टोयोटा के चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपना ध्यान जापान के कारोबारी समुदाय पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री कोइजुमी जुनइचिरो की सरकार में आर्थिक एवं वित्तीय नीति समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 2002 में मौजूदा जापान व्यापार परिसंघ या खेईदानरेन के पहले अध्यक्ष भी बने। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में ओकुदा ने खाड़ी देशों और अन्य स्थानों का दौरा किया, विदेशी नेताओं से मुलाकात की और जापान की तरफ से राजनय में शामिल रहे। उन्होंने एक नीति आधारित वित्तीय संस्थान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। ओकुदा 2018 तक टोयोटा कंपनी के सलाहकार बने रहे। अमरीकी सेना का कहना है कि उसने ईरान की ओर जा रहे पनामा ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज को निष्क्रिय कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उसके बलों ने उस पोत के स्टीयरिंग गियर को निष्क्रिय कर दिया है जिसने ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। पोस्ट में कहा गया है कि अमरीकी नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइलें दागी क्योंकि जहाज के चालक दल ने बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। इसमें यह भी कहा गया है कि अब जहाज पूर्ण रूप से प्रभावी अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरान की ओर नहीं जा रहा है। अमरीकी सेना का कहना है कि 14 जुलाई को मौजूदा नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक उसने 3 जहाजों को निष्क्रिय किया है जो उसकी नाकाबंदी की अवहेलना कर रहे थे। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों सहित कई मामलों में मौत की सजा सुनाई है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित 8 अन्य लोगों को भी मौत की सजा सुनाई गई। असद के नेतृत्व वाली सीरिया की निरंकुश सरकार दिसंबर 2024 में गिर गई थी। देश 2011 से गृह युद्ध की चपेट में था। सीरिया के पुनर्निर्माण के बीच पूर्व सरकार की जवाबदेही तय करने के प्रयास भी सामने आ रहे हैं। असद प्रशासन ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने निर्णय लेने वाले सर्वोच्च व्यक्ति और हत्या तथा अन्य अपराधों में शामिल सरकारी संस्थानों को निर्देशित करने में असद की भूमिका का हवाला दिया। सरकार गिरने के तुरंत बाद असद रूस में निर्वासन में चले गए। उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चला। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं।
1: और अंत में सुने इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।
2: जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। कोइजुमी ने पत्रकारों को बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र से दागा गया था और इसने लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कहा कि माना जाता है ये जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी है।
1: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
3: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारुजी ने जवाब दिया,
3: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
6: नमातामागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
6: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
6: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
6: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
6: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
6: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
6: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
6: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
6: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
6: तबेरारेमासेन, नमा तमागो वा तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
7: दोज़ो, ताकुसान तबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा तबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
7: दोज़ो, ताकुसान तबेते कुदासाई,
1: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
6: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
6: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
6: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
6: 食べる
0: के ते रूप के बाद
6: ください
0: जोड़कर बना है।

0: दूसरी महिला ने उत्तर दिया।
1: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
0: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
2: सुमिमासेन
3: का मतलब है माफ कीजिए,
2: वताशी
3: का अर्थ है मैं, और
2: साशिमी
3: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
0: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: साशिमी वा ताबेरारेमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
2: एबी।
3: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
4: सुमिमासेन, वताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
0: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
2: बुतानिक।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: सुमिमासेन, वताशी बुतानिक वा ताबेरारेमासेन।
3: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
6: इतादाकिमास।
2: इतादाकिमास
0: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
2: गुत्सो समादेष्टा।
3: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
2: इतादाकिमास
3: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
2: गुत्सो समादेष्टा।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
2: इतादाकिमास, गुत्सो समादेष्टा।
3: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
3: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
0: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
3: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
0: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
3: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की बड़ी गाड़ी साज कंपनी टोयोटा मोटर के साबिक सदर ओकुदा हिरोशी हफ्ते के रोज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। ओकुदा

0: 1955 में तब की टोयोटा की सेल्स कंपनी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में ये कंपनी टोयोटा के पैदावारी शोबे में जम होकर टोयोटा मोटर बन गई। अंजहानी ओकुदा 1995 में बानी खानदान से बाहर कंपनी का सदर बनने वाले पहले फर्द थे। उनके दौर में टोयोटा ने प्रियूस हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की और अपने माहौलियाती इकदाम को बढ़ाया। कंपनी ने बैरून मुल्क मंडियों में अपनी तोसी को भी तेज किया। 1999 में टोयोटा का चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपनी तवज्जो जापान की कारोबारी बरादरी पर मरकूज कर दी। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम कोइजुमी जुनिचिरो के दौर में हुकूमत के इक्तसादी और मालियाती पॉलिसी पैनल के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 2002 में कारोबारी फेडरेशन के पहले सरबराह भी बने, जो अब जापान बिजनेस फेडरेशन या कैदनरेन कहलाती है। वजीर आजम के खसूसी एलची के तौर पर ओकुदा ने खलीजी रियासतों और दीगर मकामात के दौरे किए, गैर मुल्की रहनुमाओं से मुलाकातें की और जापान की जानिब से सफारतकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने जापान बैंक बराए बैन अल्कौमी ताउन के सरबराह के तौर पर भी काम किया, जो पॉलिसी पर मबनी मालियाती इदारा है। ओकुदा 2018 तक टोयोटा के मशीर रहे। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने पानामा के झंडे वाले उस कार्गो जहाज को नाकारा बना दिया है जो ईरान की तरफ जा रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मंगल के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उसकी फोर्सेस ने मस्कूरा बहरी जहाज के स्टेयरिंग गियर को नाकारा कर दिया है। उस जहाज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ जाते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। पोस्ट में कहा गया है कि जहाज के अमले ने इंतबाह को बार बार नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिजाइल दागे। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि यह जहाज अब अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब गामजन नहीं। ये नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने 14 जुलाई को मौजूदा बहरी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक 3 ऐसे बहरी जहाजों को गैर फाल किया है जिन्होंने हदायात की तामील नहीं की। शाम की एक अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को कत्ल और इंसानियत के खिलाफ जराइम समेत दीगर जराइम में सजाए मौत सुनाई है। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने इतला दी है कि दारुल हुकूमत दमिश्क की एक अदालत ने मंगल को इस सजा का ऐलान किया। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और उनकी हुकूमत के साबिक सीनियर अहदेदारों समेत 8 दीगर अफराद को भी मौत की सजा सुनाई गई है। असद की जेर क्यादत शाम की आमराना हुकूमत दिसंबर 2024 में गिर गई थी। ये मुल्क 2011 से खाना जंगी का शिकार था। शाम की तामीर नो के साथ साबिक हुकूमत के मुहासबे के इकदाम सामने आ रहे हैं। असद हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन किया था। मंगल को सुनाई गई सजा में अदालत ने असद के बतौर आला तरीन फैसला साज और कत्ल और दीगर जराइम में मुलविस रियासी इदारों को अहकाम देने में उनके किरदार का हवाला दिया। असद अपनी हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद रूस में जलावतनी इख्तियार कर गए थे। इस मुकदमे की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में हुई। ये अभी तक वाज़े नहीं है कि आया उनकी हवालगी की जाएगी या नहीं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान के वजीर दिफा कोइजुमी शिनजिरो का कहना है कि शुमाली कोरिया ने बुध की सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। और टोक्यो और नवाही इलाकों में नुकसान करने के बाद एक ताकतवर तूफान जापान के मरकजी जजीरे से गुजर गया है। हुकाम का कहना है कि खतरात अभी खत्म नहीं हुए हैं। और कोलंबिया में पीर के रोज आने वाले एक ताकतवर जलजले से मरने वालों की तादाद 180 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।